त्यही बाटोहरू कसरी जाउला, पीर्ख पर्खिनेलाई पो हुँदो रहेछ नि। ए प्रकृति, ए देवी देवता, बचाई राखिदेऊ है।